मैंने कोई जा वहीं बा कहाँ को जा मजिया और सभी सहारी काम बाबा जोना कुछ फिर जा बा 14:46.